गुरु नानक महाराज जी दे आगमन दिन लंघ के गए। गुरु दी गोद विच बैठ के कथा कीर्तन गाई जुड़न दा यत्न कर रहे हो। अद्धी पंक्ति ए कल तारण गुरु नानक आया ते इस तो पहली अद्धी पंक्ति ए पया आनंद जगत विच। सारे चाती पायो साढ़े भी हिरदे रूपी जगत विच अजे आनंद आया के नहीं। पया आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया साढ़े भी हिरदे रूपी जगत दे विच आनंद आया कि नहीं। जे नहीं आया तो किवें आएगा। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पिखे से फिर गरवास न परिया। गुरु नानक नु सुनो फिर पिखो। वो लड़ीवार प्रकरण एक निका जिहा शुरू होया है। पाई फिरना ते पाई जोद ये दोवें सिख गुरु नानक बाबा जी को आए ने ते अध्यात्मक मंग मंगी परमेश्वर दी प्राप्ति हो जाए। निमक ना बसरों दी ताक मिल जाए। मन टिक जावे छे बचन गुरु नानक साहब ने इना दी चोली च पाए ने। तीन बचन आप जी सरवण कर चुके हो। आज चौथे बचन दी वारी है। महाराज जी सेवा लैन सात संगत अवल ते कोई गाहक ही नहीं बनता। आपां भी गाहक बनना। एक एक चीज नूं सुन के अपने ते टाल लेना। सारा जगत तुहानूं अपना नजर आण लग पेगा जदों परमेश्वर दी प्राप्ति हो गई। सारी अपने सारी जगत अपनी जगत अपना। किनू धोखा दिया कि रफरी करा।

सदगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इहदे बारे।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरम तरा।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो पर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मुकरा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीप ते दीप जगायो, जादू वरदान सवा को आवा।

जनता मन ध्यान धरे फिर सकल जग तब हमको को पावे आत्म प्रकाश को वेद वाणी सहित ब्रंच जस गावे जन को शिव मन गहना तजात कविलास को जानको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तब जटाजूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी निवाजी शास्त्र जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

पूरे जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरुमातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल बदल के गायन करना। जिम्मे हम पहला जो रहाव है वह ध्रुपद ताल च आया है, हम ताल बदल गया। इसन असी दीपचंदी कहने 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसन पड़ताल कहे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जा लो।

शब्द है वह गवैया नू महाराज का हुक्म है। वह कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्व प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़ तांग दागड़ी दिम दिरना, पागड़ी ब्रिते बांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना, तागड़ी देवे ताल कागड़ी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी देवे ताल कागड़ी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे ताल दागर दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सत मस्ती जित नाते कौआ हंस हो अमृतसर की अमृतसर गुर अमृतसर न बढ़ाया सब दाते किल वेख पंग

सरवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासू शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

सब में राग रया प्रभु एक है, सब में राग रया प्रभु एक है, सब में राग रया रया रया प्रभु एक है, सब में राग रया।

रव रया अम के सब में रव रया बस गई सब दांत बनाई जब दे साल संग माई ना को मेरी नहीं दिखाना सगल संग हम गो बने आई जो बाबू की नो वरमान हो मस मस साधु दे भाई सब में रव रया रव रया रव रया हाँ बाबू एक है सब में रव रया।

0: श्रवण करो।
1: पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राव योग।

0: एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सत्संग तुम पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब तीनो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब मेरा रहा प्रभु कह, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ए तराना जेड़ा है ए अनकौमा जेड़ियां ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कभी सुनी ही नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहबान। तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ में विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो तदरे दानी दानी दोनानी तल तुम तिरना, तदरे दानी दानी दोनानी तल तुम तिरना, तुम तिरना तल तुम तिरना। जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नु मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी हैं और तुम दानी है,
1: तदरे दानी दानी तुम दानी तलल तुम तिरना,
0: तदरे दानी दानी तुम दानी तलल तुम तिरना, तलल तुम तिरना, तलल तुम तिरना, तदरे दानी।

0: गुरमुख रंग चलू लिया
1: कहो नानक
0: रंग चलून पे है गुरमुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो भिन्ना मेरा मन तनो भिन्ना जल नानक मुश्क चकोलिया सब जन्म धन धन।

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज देन तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हरिमंदर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उना जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे ओथे दे ओथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नु मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उना दे दिमाग ओथे दे ओथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहिब ने ते गुरु दा दित्ता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह की खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

सिख शिकायत कर रहे ने। भाई कन्हैया की कहिंदे, भाई कन्हैया कहिंदे सतगुरु जिथे चूहा पानी तेरा मुख दिसे, किसे गैर दे मुंह च पाया ही नहीं, तेरा दसिया तेनू मैं की दसा, तू ते दुई दा पाठ पढ़ाया ही नहीं, मेरे दातिया सारे मैदान अंदर तिथ बाज कोई नजर आया ही नहीं, मैं ते तुहाडे तो सुभा किसी नूं नहीं वेख्या, जिथे पानी चोना ना पानी पाना उथे मैनू तुहाडी कलगी जिगा नजर आउंदी। ते सतगुर केड़ा सिख है जो गुरु दे मुख विच पानी ना पावे। लो जी कलगीधर पातशाह, ये नहीं कि गुरु साहबान ने करके विखाया, सिखा अंदर भी ये गल है। सतगुरु ने सीने नाल ला लिया, आख्या कन्हैया तेरी बिनाई साफ हो गई है, तेनू वैरियां विच ते साडे विच अंतर ही नजर नहीं आ रहे। कहना जिथे जूआ पानी तेरा मुख दिसे, किसे गैर दे मुंह विच नहीं पा। सतगुरु मैं ते तेरे मुख विच पानी पा रहे, तेरे सवा कोई नजर ही नहीं आ रहा। सतगुरु ने फिर पता की कीता, एक मलम दी डब्बी ते नाल पट्टी भी दे दित्ती। भाई कन्हैया जिथे पानी पिला के जीवन दान देना है, उथे नाल मलम पट्टी भी करी जा। सतगुरु ते इहो जिहे गुरसिखां नूं इह उहनां ने जाच समझाई है, पर अज दा सिख किथे खड़ा है? कि उहदे मन च इह विचार है, कि उहदी सोच इथों तक पहुंची है? जे अजे तक नहीं पहुंची ते किन्ना समां हो गया सानूं पढ़दे आ सुणदे आ, पर गल अजे उथे दी उथे ही खड़ी है, अगां नहीं गई। आओ कोशिश करिए जो सतगुरु ने बचन कहे ने इन्हां नूं कमा सकीए, इन्हां ते अमल कर सकीए। जे असीं अमल नहीं करांगे तद तक गल नहीं बनेगी, क्योंकि अमल तो बिना गल नहीं बननी। जद तक असीं इस ते अमल करके इन्हूं प्रैक्टिकल जीवन विच नहीं लियांदे तद तक गल नहीं बननी। सो सतगुरु जी सानू ये गल समझा रहे ने, आओ भाई जोत नू मुख रखो जात नू नहीं। ते जिन्हां ने जोत नू मुख रखे वो जुड़ गए ने परमात्मा नाल, वो परमात्मा विच अभेद हो गए ने, एक मिक हो गए ने। ते जिन्हां ने अजे जोत नू नहीं मन्निया जात नू मुख रखे है, वो परमात्मा तो दूर ने, अजे परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। वो रहणगे भी दूर, क्योंकि वो दूरी उसे तरह पैदा करी जा रही है। जी परमात्मा दे नेड़े जाना है ते परमात्मा दे हुक्म नू मनना पएगा, क्योंकि हुक्म मन्ने होवे परवाह, प्रवानगी तां मिलनी है जे असीं उहदा हुक्म मन के चलांगे। सो सतगुरु जी ने इस जात पात नू ऊंच नीच पिन पेत नू मिटा के एक जोत दी गल कीती है, ते एक जोत असीं तां ही हो सकने हैं जे गुरु दा असीं हुक्म मन के अपने जीवन नूं बतीत कर सकीए। सतगुरु बख्शिश करन ऐसी गल साडे अंदर आ जाए, गुरु दा हुक्म कमा सकीए जी।

कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रशादा नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर सूतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इत्थे धन गुरु नानक।

कैसे फिटते गुरु बाबे फिट कैसे फिटे गुरु अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे

हमारी जेबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कही है जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी मेरी मत थोरी हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी तू समरथ वड़ा वड्डी हूं।

0: जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला
1: हर कृपा का।

तो कहा सारे मिलके पढ़िए और जतन करिए जो गुरु ने सानू पूरने पाके दसे हैं कि प्यार किया गुरु ने साडे नाल असी भी जतन करिए उन्हों प्यार करने उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दस्या आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदी। एक बड़ा सुंदर सवाल है सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हैं भाई साहब कहेंगे ना फिर पैरों वाल सिर क्यों जाता उन्हां कदमों की की खूबी की है सारिया पैरों पर तो नहीं सिर झुक जाता उच्चारण करो श्री सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचलदे सारे चिन्ह उपर हैं मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचलदे हजूर कहते हैं सब चिन्ह छड पूजियन कदमां दी पूजा क्यों होंदी है वो कौन कर्म कमांदे वो कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हां कदमां ते बदो बदी सिर झुक जाता है उच्चारण करो श्री ता अगलियां टुकां विच भाई साहब जवाब दे रहे हैं आप कहते हैं भाई वो कदम तां तनता दे योग हैं गुर सरणी साध संगती ने चल चल जा गुरु के सिख दे कदम सतसंगत वल जान चंगे लगते अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करता है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री किधर चले हो जी मैं गुरुद्वारे चले किदी सोहनी सुगंधी है कितनी सोहनी शोभ है क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी की अमृत वेले जागना है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकी पौजल बनी हुई सी 10 लाख का फेरा सी इतिहास में पढ़ो जदों आनंदपुर साहब का किला छड़िया ते एडे वड्डे पौजल विच भी उन्होंने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया जदों अमृत वेले का समा होया भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया गरीब नवाज समझ नहीं आई अच्छा आशा दी वार दे कीर्तन का समा जा रहा है ते उथे भी बह के आशा दी वार का कीर्तन होया हुण असी अपने अंदर छाती पाईए कोई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता ते फिर इन्हें सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते। उन्होंने तो सानू पूरने पाके दसे हन कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं ते असी एडिया सुखां विच रह के भी जे उहदा शुकराना नहीं करते तो फिर सिख कदे होए उच्चारण करो श्री वाहे इसलिए आओ भाई भाई साहब गुरदास जी पूरने पा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जाते हैं भाई गुरदास जी कहते हैं उन्होंने कह दियो जिहड़े जोड़े उन्होंने पहने हैं वह उतार देन पता नहीं किस चमड़े के हैं आ मेरे तन के चमड़े के जोड़े बनवा के उन्होंने पहना दो उच्चारण करो श्री भाई गुर शरणी साध संगति नित चल चल जाते वतन पर पुकार कर पार वसाने मेरी खलो मौजरे गुरसिखांडा। तो भाई इतनी निम्रता गुरु घर विच है परस पर आपस विच प्यार करिए जदों भी मिलिए फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का हजूर का वचन है जेड़ा पहला फतेह बुलावेगा मेरा मुख उस वल होगा उच्चारण करो श्री भाई होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाए हर नामे की होवो जोरी गुरमुख बैठो सफा विषय आज जुड़े बैठे हो हजूर कह रहे हैं सही सुंदर सोने साध संगत जो बहने गुरु नू कोई सुंदर लगते हैं चंगे लगते हैं जो सतसंगत बह के जपते हैं श्री वाह। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी का
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संग है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्हां ने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्हां ने पक्के होए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुआं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ऐ जिहड़े कच्चे हन इन्हां ने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जिहड़ियां हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इस अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इस वरत लीए तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचड़ा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंने हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हां, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुम उस ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वो चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हां, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहों च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, यह सारे पक्के हुए सन। कहते वो सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सके, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठी ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठी गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसनों सुनो फिर उसका अर्थ करांगे।